0: गई ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है
0: तथा

0: हरिओम हरिओम।
1: मेरे सामने आ मुझे हाथ दिखा, क्या गड़बड़ है पहले ये बता। मेरे सामने आ मुझे हाथ दिखा, क्या गड़...

भगवती भव पुत्रवती भव भाग्यवती भव पुत्रवती भव मंगलमय आशीष दिला दूं आशीष दिला दूं। जब फिक्र नहीं है माल